हैपन इन लाइफ। कभी कभी लगने लगता है ये भी कोई ज़िंदगी है। दिस इज़ नॉट फेयर। ज़रा आसपास नज़र घुमाना दोस्तों, बहुत से ऐसे दिखेंगे जिन्हें इतना भी नसीब नहीं। फिर जब मुश्किल से उबर कर बाहर आओगे तो पाओगे ये भी एक एक्सपीरियंस था जो कुछ सिखा कर गया, कुछ अनुभव दे के गया। ठोकर देकर हमें सही राह सिखाती है, इस तरह ज़िंदगी जीने का पाठ पढ़ाती है।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आठ गुण में नहीं लेना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए आप कुछ नहीं आ रही है, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड।
1: दोस्तों, अभी जो ये गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म मासूम से। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं तुम जिंदगी को मिले हो। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, मौत ने आना ही है तो मौत से घबराएं क्यों, मौत से पहले ही आखिर जिंदगी से जाएं क्यों। दोस्तों, पता है जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? ये चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। बुरा हो या अच्छा हो, वक्त गुजर ही जाता है, बट चॉइस इज योर्स। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये हमें ही तय करना है, रोते हुए निराश होकर या खुशी भरी उम्मीद लेकर, ये हम पर डिपेंड करता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल पलट जाती है, कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है।

दोस्तों, अभी जो आपने गाना सुना उसे गाया था अरिजीत और नेहा कक्कड़ ने। कुछ लोग जिंदगी को सफर मानते हैं कि हम एक सफर पर निकले हैं, ठिकाना तो मौत है। बेशक जिंदगी एक सफर है, तो क्यों ना इस सफर को हंसकर मुस्कुराकर तय किया जाए। बहुत सी मंजिलें आएंगी इस सफर में, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, पर सफर जारी रहेगा। बहुत लंबे सफर की एक शुरुआत है, अभी तो दो पल बीते हैं, अभी तो बाकी सारी रात है।

क्यों नहीं दोस्तों, यह सफर तो अच्छा कटेगा ही, क्योंकि आप जुड़े हैं भारत एफएम पर कविता के साथ। दोस्तों, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं हो सका। अधूरी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहने का नाम जिंदगी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसने ये सीख लिया वही सही मायनों में जीना सीख गया। पर यह भी एक सच है कि जिंदगी में हम सीखते वही हैं जो हम सीखना चाहते हैं। कल्पनाओं से परे है जिंदगी, कभी रेगिस्तान की धूप तो कभी मीठी बारिश है जिंदगी। कुछ अनकहे किस्सों की किताब है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी।

दोस्तों, यूं तो जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, ले भी लेती है, लेकिन इस लेन देन में हम ही अमीर हो जाते हैं, चाहे महसूस ना कर पाए। अमीरी सिर्फ सिक्कों से नहीं होती जनाब, तजुर्बा क्या कम अमीरी है? जिंदगी के मरहले कुछ और नहीं तो तजुर्बे तो इफरात भी देते ही हैं। वो कहते भी हैं ना कि जिन्हें जिंदगी ने तजुर्बा दिया उन्हें फिर और कोई चाहत होती ही नहीं। खुद को इतना मजबूत और हौसलेमंद बनाना है कि जिंदगी एक हंसी ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।

दोस्तों, अब जो गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो शायद किसी किसी ने ना भी सुना हो। उसे गाया है रफ़ी साहब ने। 1926 में एक फिल्म बन रही थी तेरे बगैर, और मोहम्मद रफ़ी साहब चाहते थे कि इसे उनकी मौत पर यह वाला गाना चलाया जाए, जो बाद में मदन मोहन जी के बेटे ने गाया भी। ये गाना उनके प्यारे दोस्त उत्तम कुमार पर फिल्माया जाना था, पर किसी वजह से वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई और उत्तम कुमार 1980 में उनकी मौत हो गई, और उसके एक हफ्ते के बाद ही मोहम्मद रफ़ी जी भी चल बसे। दोस्तों, सुनते हैं ये गाना, कैसे कटेगी जिंदगी।

जिंदगी सब कुछ सिखा देती है और वक्त के साथ पता चलता है कि जिंदगी के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो सबसे प्यारा हो जाता है, पर जब वही गलत साबित होता है तो हम टूटने लगते हैं। लेकिन किसी एक के गलत होने से, चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुका करती। वक्त के साथ सब ठीक तो हो जाता है, पर कई बार उसकी कमी जिंदगी में खटकती रहती है।

0: सुनो आदि, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस की लंबी थी ना।

बड़े ही अजीब हैं ये ज़िंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे, मगर बिछड़ने का गम ज़रूर दे जाते हैं।

0: अभी जो आपने गजल सुनी थी उसे आवाज दी थी चित्रा सिंह ने। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए मिली है, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रखी है दोस्तों, दुश्मन कोई आगे ना निकल पाए और दोस्त कोई पीछे ना छूट जाए। इसी के साथ कविता को दीजिए इजाजत, जल्दी ही फिर मिलते हैं जिंदगी के किसी अगले बोर्ड पर। शब्बा खैर, नमस्कार।
1: This is Bharat FM.
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।

0: ये है भारत एफएम,
1: बजेगा भारत झूमेगा भारत।
0: दिस इज भारत एफएम,
1: बजेगा भारत झूमेगा भारत।

0: ये है भारत FM,
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूं भारत FM पर साजे दिल में कविता। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। दोस्तों, ये मेरी पसंद का गाना है क्योंकि इस गाने से मुझे ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। हज़ारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम ज़िंदगी है। चलते रहिए जनाब।

0: बात सुनते हो जियोली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that would be

जिंदगी चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। दोस्तों, जिंदगी कोई रेस नहीं है कि हमें बस भागते ही जाना है और मुकाम हासिल करते जाना है। जिंदगी तो कदम दर कदम बढ़ने का नाम है। एक कदम आशा का, उम्मीद का, फिर अगला कदम। अगर ना उम्मीदी का भी आए तो कोई गम नहीं, उससे अगले कदम पर नज़र टिका लो।

अभी जो आपने गीत सुना उसे लिया था हमने सौतन फिल्म से। दोस्तों, जब गुलाब में खूबसूरती होती है, खुशबू होती है, पर कांटे भी तो होते हैं। जिंदगी भी हमेशा गुलाबी तो नहीं हो सकती। जब कभी कांटे चुभे, हार्ड टाइम आए, तो हौसला ना खोना। जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हमेशा याद रखना, व्हेन योर हार्ट इज रेडी टू ब्रेक, दैट इज द परफेक्ट टाइम टू बेक। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी। जिंदगी ही तो है।

अभी जो गाना आपने सुना उसे लिया था हमने फिल्म शोर से। दोस्तों, हर रात की सुबह होती है, हर आंसू की मुस्कान होती है। टेरिबल थिंग्स हैपन इन लाइफ। कभी कभी लगने लगता है ये भी कोई ज़िंदगी है। दिस इज़ नॉट फेयर। ज़रा आसपास नज़र घुमाना दोस्तों, बहुत से ऐसे दिखेंगे जिन्हें इतना भी नसीब नहीं। फिर जब मुश्किल से उबर कर बाहर आओगे तो पाओगे। ये भी एक एक्सपीरियंस था जो कुछ सिखा कर गया, कुछ अनुभव दे के गया। ठोकर देकर हमें सही राह सिखाती है, इस तरह ज़िंदगी जीने का पाठ पढ़ाती है।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आठ गुण में नहीं लाना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए आप कुछ नहीं आ रही है, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड।
1: दोस्तों, अभी जो ये गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म मासूम से। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं, तुम जिंदगी को मिले हो। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, मौत ने आना ही है तो मौत से घबराएं क्यों, मौत से पहले ही आखिर जिंदगी से जाएं क्यों। दोस्तों, पता है जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? ये चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। बुरा हो या अच्छा हो, वक्त गुजर ही जाता है, बट चॉइस इज योर्स। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये हमें ही तय करना है, रोते हुए निराश होकर या खुशी भरी उम्मीद लेकर, ये हम पर डिपेंड करता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल पलट जाती है, कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है।

दोस्तों, अभी जो आपने गाना सुना उसे गाया था अरिजीत और नेहा कक्कड़ ने। कुछ लोग जिंदगी को सफर मानते हैं कि हम एक सफर पर निकले हैं, ठिकाना तो मौत है। बेशक जिंदगी एक सफर है, तो क्यों ना इस सफर को हंसकर मुस्कुराकर तय किया जाए। बहुत सी मंजिलें आएंगी सफर में, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, पर सफर जारी रहेगा। बहुत लंबे सफर की एक शुरुआत है, अभी तो दो पल बीते हैं, अभी तो बाकी सारी रात है।

क्यों नहीं दोस्तों, यह सफर तो अच्छा कटेगा ही, क्योंकि आप जुड़े हैं भारत FM पर कविता के साथ। दोस्तों, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं हो सका। अधूरी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहने का नाम जिंदगी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसने ये सीख लिया वही सही मायनों में जीना सीख गया। पर यह भी एक सच है कि जिंदगी में हम सीखते वही हैं जो हम सीखना चाहते हैं। कल्पनाओं से परे है जिंदगी, कभी रेगिस्तान की धूप तो कभी मीठी बारिश है जिंदगी। कुछ अनकहे किस्सों की किताब है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी।

दोस्तों, यूं तो जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, ले भी लेती है, लेकिन इस लेन देन में हम ही अमीर हो जाते हैं, चाहे महसूस ना कर पाए। अमीरी सिर्फ सिक्कों से नहीं होती जनाब, तजुर्बा क्या कम अमीरी है? जिंदगी के मरहले कुछ और नहीं तो तजुर्बे तो इफरात भी देते ही हैं। वो कहते भी हैं ना कि जिन्हें जिंदगी ने तजुर्बा दिया उन्हें फिर और कोई चाहत होती ही नहीं। खुद को इतना मजबूत और हौसलेमंद बनाना है कि जिंदगी एक हंसी ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।

दोस्तों, अब जो गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो शायद किसी किसी ने ना भी सुना हो। उसे गाया है रफ़ी साहब ने। 1926 में एक फिल्म बन रही थी तेरे बगैर, और मोहम्मद रफ़ी साहब चाहते थे कि इसे उनकी मौत पर यह वाला गाना चलाया जाए, जो बाद में मदन मोहन जी के बेटे ने गाया भी। ये गाना उनके प्यारे दोस्त उत्तम कुमार पर फिल्माया जाना था, पर किसी वजह से वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई और उत्तम कुमार 1980 में उनकी मौत हो गई, और उसके एक हफ्ते के बाद ही मोहम्मद रफ़ी जी भी चल बसे। दोस्तों, सुनते हैं ये गाना, कैसे कटेगी जिंदगी।

जिंदगी सब कुछ सिखा देती है और वक्त के साथ पता चलता है कि जिंदगी के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो सबसे प्यारा हो जाता है, पर जब वही गलत साबित होता है तो हम टूटने लगते हैं। लेकिन किसी एक के गलत होने से, चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुका करती। वक्त के साथ सब ठीक तो हो जाता है, पर कई बार उसकी कमी जिंदगी में खटकती रहती है।

0: सुनो आदि, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस की लंबी थी ना?

आशा पारेख महज 19 साल की थी जब छाया 1961 में रिलीज हुई थी उन आशा पारेख के साथ, और ये गीत आपने उस फिल्म से सुना जिसको तलत महमूद ने बड़ी खूबसूरती से गाया। तो दोस्तों 80 साल की उम्र में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है इस साल, तो चलिए उनके गानों को थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। ये पहला गीत जो आपने सुना इसकी फरमाइश की थी अनीता जी ने, अब अगले मोड़ में सीके अनीता जी ने और सीके वासुदेवन साहब ने, अगले मोड़ में जो आपको गाना सुनाना हूँ उसकी फरमाइश की है सुधीर मटानी साहब ने, और एकदम एवरग्रीन क्लासिक गाना है जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। लीजिए सुनिए।

मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का खूबसूरत म्यूजिक, और फिर वही दिल लाया हूँ का ये नगमा आपने सुना सुधीर मटानी की फरमाइश में, कि तमाम अल्फाज नाकाफी लगे मुझे, तमाम अल्फाज नाकाफी लगे मुझे एक तेरी आंखों को बयां करने में। अगले मोड़ पर आप सुन रहे हैं चांदनी दिगे और रिपा मेहता की जॉइंट फरमाइश, बहारों के सपने, जो कि 1967 में रिलीज हुई थी। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में, सॉरी जी नहीं, आशा भोसले की आवाज़, नहीं सॉरी मेरे

तो ये तो थी लता मंगेशकर एक बार फिर से मजरू सुल्तानपुरी के बोल, पर इस बार म्यूजिक था आरडी बर्मन का और ये फरमाइश की थी चांदनी दिगे और रिपा मेहता ने। बाहरों के सपने के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि फ्राइडे को जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसमें हीरो हीरोइन दोनों मर जाते हैं, पर वो तो ऑडियंस को एकदम पसंद नहीं आया और मंडे तक फिल्म में दोनों एंड ऑफ द मूवी दे आर बोथ अलाइव, दैट वॉज आशा पारेख एंड राजेश खन्ना। और पर फिर भी एंड चेंज करने के बाद भी वो फिल्म चली नहीं। गुलशन राय साहब उस समय बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने तो सख्त मना कर दिया फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने से। चलिए ये तो रही आशा पारेख की छोटी सी कहानी और उनकी फिल्मों की दास्तान। दास्तान काफ़ी दर्दनाक है क्योंकि शुरू शुरू में जैसे कि आपको शायद मालूम होगा कि उनकी पहली फिल्म गूंज उठी शहनाई 2 महीने तक उन्होंने शूट करी और फिर विजय भट्ट साहब ने बोल दिया कि ये तो काम नहीं चलेगा और उनको रिप्लेस कर दिया एक्ट्रेस अमिता से। और आशा पारेख जी का लक देखिए, एग्जैक्टली 8 डेज आफ्टर दैट सुबोध मुखर्जी और नासिर हुसैन कास्टर इन दिल देखे देखो 1959 विच बिकेम अ ह्यूज सुपरहिट। आपने एक और बात ये नोटिस करी होगी कि पहले 3 गाने जो थे वो तीनों ए से शुरू हुए, आंचल में सज आँखों में मस्ती शराब की जो कि वासुदेवन साहब की फरमाइश थी, फिर सुधीर मटानी की फरमाइश आँखों से जो उतरी है दिल में, और ये तीसरा गीत चांदनी और रिपा के लिए आजा पिया तो है प्यार दूँ। तो आज की शाम ऐसे ही चलती है, ए टू जी करते हैं आशा पारेख का। अगले मोड़ पर आपको बी से आशा पारेख का एक गाना सुना रहा हूँ, उनका तो नहीं है, गा तो रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, पर उनका किरदार इस मूवी में काफ़ी अर्न्ड हर क्वाइट अ बिट ऑफ प्रेज एंड दो बदन वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर बोथ मनोज कुमार एंड आशा पारेख व्हेन इट वाज रिलीज्ड। सो लीजिए सुनिए बी से शुरू होने वाला आशा पारेख का गाना, शकील बदायूनी के बोल, रवि का म्यूजिक और आप गेस कर चुके हैं भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं।

तो दोस्तों ये है भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फरमाइश और आज की शाम आशा पारेख के नाम है, जिन्हें इसी साल दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। चलिए अगले मोड़ पर आपको उनका असली टैलेंट दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है वो एक ट्रेंड कथक और भरतनाट्यम डांसर थी, तो कुछ हो जाए ठुमके वाला गीत, बाहरों के सपने से वापस ये गीत सुनिए मन्ना डे और लता की आवाज़ में। सी पर आ चुके हैं हम।

0: तो ये तो हुआ आशा पारेख का डांसिंग स्टाइल। जी हाँ, नाचने वाली, नाचने में सबसे माहिर थी वो, और उनकी डांसिंग स्टाइल कुछ अलग ही थी, बहुत ही वेल मीनिंग सी डांसिंग स्टाइल्स थी। और डांसिंग से मुझे याद आ गया कि हम आ गए हैं लेटर डी पर, और डी से कौन सी मूवी हो सकती है एक्सेप्ट उसको प्रोड्यूस किया नासिर हुसैन साहब ने, जो कि आशा पारेख के काफ़ी अच्छे मेंटोर थे, और डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने। 1966 की मूवी है, और जी हाँ, मंजिलों की बात हो रही है, चांदनी दिघे की फरमाइश भी आई हुई हुई है। तो चलिए, आपको गाना सुनाने से पहले ये बता दूं कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बस बादल समझता है। लीजिए सुनिए फिल्म तीसरी मंजिल का ये नगमा।
1: खास बात नहीं,
2: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे।
1: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा?
2: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे।
1: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन?
2: गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है पीछे पीछे।
1: अच्छा, अब आइए साथ साथ चलें।
2: जी नहीं, हमारी यही जगह है पीछे पीछे।
1: पीछे पीछे पीछे पीछे, दीवाने तो नहीं हो गए आप?

1960 की फिल्म घूंघट जो थी वो बड़ी मज़ेदार मूवी थी, क्योंकि रवि साहब ने इस मूवी में इतने सुंदर गीत दिए कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जैसे लागे ना मोरा जिया, पट रखो गिरधारी, मोरी छम छम बाजे, ये सब गीत जो थे बहुत ही खूबसूरती से इस चलचित्र में प्रदर्शित हुए थे। और उसी फिल्म का एक गीत वासुदेवन साहब ने सेलेक्ट किया है, गीत गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। इस मूवी में तीन गाने लता जी ने गाए थे, तीन गाने आशा भोसले ने गाए थे, दो रफ़ी साहब ने और तीन आशा भोसले और दो महेंद्र कपूर ने। तो ऐसे काफ़ी सारे अच्छे गीत थे इस मूवी में, पर ये अगला गीत जो है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। वासुदेवन साहब की फरमाइश है, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: तो दोस्तों ये तो थे प्रदीप कुमार और आशा पारिक चलचित्र पे इस गीत के साथ। अगले मोड़ पर आपको बिस्वजीत दा और आशा पारिक का एक गीत सुनाता हूँ। ज्योति स्वरूप साहब ने 1963 में ये फिल्म डायरेक्ट की थी आशा पारिक और बिस्वजीत दा के साथ। फिल्म का नाम था बिन बादल बरसात। और अब हम लेटर ई पे आ गए हैं और आपको गैस करना है कि लेटर ई से बिन बादल बरसात का कौन सा डुएट हो सकता है। ये डुएट जो है लता और हेमंदा का बहुत ही खूबसूरत नगमा है, और जैसे ही आप सुनेंगे तो आप मुझसे कहेंगे कि एक बार ज़रा फिर तुम कह दो।
1: एक बार जरा फिर कह दूं

0: कहो ना।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
2: चलिए, आपने आशा पारिक को दीवाना कहते हुए भी सुन लिया। अब अगले मोड़ पर लेटर एफ की बारी है, पर एक एफ से आशा पारिक का गाना खोजने में मैं फेल हो गया। तो मुझे आप एफ दे दीजिए और मुझे बताइए एफ से कोई गाना जो कि लता आशा पारिक पे दर्शाया गया हो या उनकी फिल्म से हो। फिलहाल तो हम जी की तरफ बढ़ते हैं और जी से तो बहुत लोगों को ये गाना याद आएगा। जितेंद्र थे उनके साथ 1971 में फिल्म कैरावान में, और जी हाँ, उन्होंने काफ़ी मज़ेदार गीत और नाच किए थे इस मूवी में। पर फिलहाल आप सुनिए, जितेंद्र साहब पूछ रहे हैं कि गोरिया कहाँ तेरा देश रे।

तो ये तो हुआ आपका जी से गोरिया कहाँ तेरा देश रे, और अरे हो तो आप कहेंगे ए से भी शुरू हो सकता था ये गीत, पर फिलहाल एच की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे एच में बहुत सारे अच्छे गीत हैं जो कि आशा पारिक से रिलेटेड हैं, जैसे कि हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुए हैं तुम पे आशिक हम भला मानो बुरा मानो, और हमदम मेरे मान भी जाओ हम और तुम ये और ये समा क्या नशा नशा है। पर फिलहाल तो आपको वही गीत सुनाऊंगा जो कि सुधीर मटानी साहब ने सेलेक्ट किया है। फिल्म का नाम था मेरे सनम, जो कि 1965 में रिलीज़ हुई थी और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी थी इस फिल्म में, और एकदम सुपर हिट हुई थी ये फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आशा पारिक को जुबली क्वीन कहा जाता था क्योंकि उस ज़माने में 25th मंथ और 50th मंथ पे सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाई जाती थी फिल्मों की, और आशा पारिक ईयर आफ्टर ईयर जुबली हिट्स देती गई। फिलहाल तो आप मेरे सनम का ये गीत सुनिए, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक था इस मूवी में। मजरू सुल्तानपुरी ने सारे गाने लिखे थे, ओपी नैयर साहब ने म्यूज़िक को डायरेक्ट किया था, और आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का कॉम्बिनेशन तो इस मूवी में जैसे छा सा गया था। लीजिए सुनिए, हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया।

अब कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई है कि ये गाना पिक्चराइज हुआ था कि नहीं मूवी में. वासुदेवन साहब, मुझे सचमुच में मालूम नहीं है कि इसका रहस्य क्या है, पर फिलहाल जो गाने पिक्चराइज हुए थे एक से एक बढ़ के गीत थे. अब जैसे आशा भोसले का जाइए आप कहाँ जाएंगे, या ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, और रफ़ी साहब का पुकारता चला हूँ मैं, और टुकड़े हैं मेरे दिल के, और हमदम मेरे, तो तीनों डुएट्स भी काफ़ी मज़ेदार थे इस फिल्म में, और उसमें से आपने एक सुना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारी बारी आ गई है एच से आए की तरफ, और आए में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नगमा मिला फिल्म छाया से. छाया में भी काफ़ी मज़ेदार गीत थे तलत महमूद के, और तलत महमूद के गीत बोल दिया है तो आप समझ गए होंगे कौन सा गीत है, पर और वो भी आई से शुरू होता है तो आप ज़रूर ही समझ गए होंगे कि कौन सा गीत है. लीजिए सुनिए.

जी हाँ दोस्तों, हमारे इंसाइक्लोपीडिया राकेश शुक्ला ने कंफर्म किया है कि एक बार जरा फिर कह दो, वाज नॉट पिक्चराइज्ड इन द मूवी बिन बादल बरसात। और चलिए अब ई से आई से जे की तरफ बढ़ते हैं आगे। जे से बड़े सारे गाने हैं आशा पारेख के, और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फरमाइशों के बेसिस पे ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इस अगले गीत की फरमाइश आई है मंडी हिमाचल प्रदेश से, जी तन्ना छत्रे की और अपनी रीपा मेहता की। जी हाँ, आशा पारेख की मूवीज़ का सिलसिला चल रहा है आज शाम को, और इस बार शकील बदायूनी के बोल और रवि का म्यूज़िक सजा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़। लीजिए सुनिए।

तो दोस्तों, दो बदन के आपने दो गाने सुन लिए, तो अब मेरे सनम के भी दो गाने सुन लीजिए। ये अगला गीत भी जेस है, इसके बाद के की तरफ मुड़ेंगे। और जी हाँ, मेरे सनम 1965 की भी यही फिल्म थी। 1965 मेरे ख्याल से आशा पारेख की लाइफ में हैज़ टू बी द पीक ईयर इन हर लाइफ, बिकॉज ऑल हर मूवीज वर सक्सेसफुल एंड शी गॉट दीज लवली नंबर्स टू प्ले विथ।

तो दोस्तों जे से बढ़ते हैं थोड़े और रीसेंट सॉन्ग्स की तरफ। अब आशा पारी की बात हो रही है तो रीसेंट सॉन्ग्स तो 60s से जाके 70s में ही जाएंगे, और धर्मेंद्र और आशा पारी का सावन से कुछ खास एफिनिटी थी उन दोनों की। जैसे कि आपको याद होगा बहुत ही फेमस फिल्म थी आया सावन झूम के, पर इस बार उस फेमस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरा गांव मेरा देश की बात, जो कि 1971 में रिलीज़ हुई थी और एकदम सुपर ब्लॉकबस्टर निकली थी। इस फिल्म का गीत, इस फिल्म के गीत की फरमाइश की है चांदनी ने, और चांदनी तो हमारी फिल्म की इंसाइक्लोपीडिया बैठी हुई है यहाँ पे, तो वो हमें ज़रूर बताएंगी कि के से कौन सा गाना